हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद माह की तिथि 10, तदनुसार दिनांक 1 सितंबर सन 2026। आज का दिन हम सब के लिए मंगलमय हो। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की

0: समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पंचबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में विहित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दो सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
3: श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, सांप के दांतों में विष है, लेकिन जब वो स्वयं खाता है तो उस पर विष का असर नहीं होता, किंतु जब दूसरे को काट खाता है तो उस व्यक्ति पर विष चढ़ जाता है। इसी प्रकार भगवान में माया है तो अवश्य, पर वो उन्हें मुग्ध नहीं कर सकती। किंतु सारे संसार को मुग्ध कर लेती है। एक बार दक्षिणेश्वर मंदिर के नौबत खाने में एक साधु आकर कुछ दिन रहे थे। वे किसी से बातचीत न कर सदा ध्यान धारणा में ही डूबे रहते। एक दिन अचानक बादल उठे और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर थोड़ी ही देर में जोरदार आंधी सी चली और बादलों को उड़ा ले गई। ये देख वे साधु कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में खूब हंसने लगे और नाचने लगे। उनकी ये अवस्था देख श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा, तुम तो हमेशा कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हो, आज इतना नाच नाच कर आनंद कैसे मना रहे हो? साधु ने कहा, संसार की माया ऐसी ही है। पहले तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं था, पर एकाएक ब्रह्म रूपी शांत आकाश में प्रकट हो उसने इस जगत प्रपंच का सर्जन कर डाला। फिर ब्रह्म के निश्वास मात्र से वो जाने कहां ओझल भी हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकले। आगे आगे राम चले, बीच में सीता और पीछे पीछे लक्ष्मण। राम का सदा पूर्ण दर्शन पाने के लिए लक्ष्मण व्याकुल थे, पर बीच में सीता के होने के कारण ये संभव न था। तब लक्ष्मण ने सीता से प्रार्थना की कि वे तनिक बाजू हट जाएं। सीता के थोड़ा बाजू हटते ही लक्ष्मण की इच्छा पूरी हुई, उन्हें राम के दर्शन हुए। यही हाल ब्रह्म, माया और जीव का भी है। जब तक माया हट न जाए तब तक जीव ब्रह्म के दर्शन नहीं पा सकता। एक साधु हाथ में कांच की नली का एक टुकड़ा लिए दिन रात उसकी ओर ताकते और हंसते जाते थे। जिस प्रकार उस कांच के भीतर से लाल, नीले, पीले आदि कई रंग दिखाई देते हैं, पर वे सभी मिथ्या हैं, उसी प्रकार ये संसार सत्य प्रतीत होता है, पर है मिथ्या ही। यही सोचकर वे हंसा करते थे। हरि जब सिंह का मुखौटा लगा लेता है तो सचमुच बड़ा डरावना दिखने लगता है। वो अपनी खेलती हुई छोटी बहन के पास जाकर सिंह की सी आवाज करते हुए उसे डराने लगता है तो वो बच्ची चौंक कर मारे डर के चीखती हुई भागने लगती है। लेकिन जब हरि का मुखौटा हट जाता है तो तुरंत वो घबराई हुई बच्ची अपने प्यारे भाई को पहचान कर उसकी ओर चिल्लाती हुई दौड़ पड़ती है, अरे ये तो भैया हैं। मनुष्यों का भी यही हाल है। माया के आवरण में ब्रह्म ही छिपा हुआ है, फिर भी माया की शक्ति से लोग मुग्ध और भयभीत होकर कितनी ही चीजें करने को विवश हो जाते हैं। लेकिन जब ब्रह्म के स्वरूप पर से ये माया का पर्दा हट जाता है तब वो भयंकर कठोर शासक के रूप में प्रतीत नहीं होता, तब तो अपनी ही प्रियतम अंतरात्मा के रूप में उसका अनुभव होता है। ईश्वर यदि सर्वत्र विराजमान हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? काई से ढके तालाब के किनारे खड़े होकर देखने पर हमें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा। अगर हम पानी देखना चाहते हैं तो तालाब पर से काई हटा दें। माया के पर्दे से ढके हुई आंखों से देखकर हम लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देते? अगर हम ईश्वर को देखना ही चाहते हैं तो आंखों पर से माया का पर्दा हटा लें। जिस प्रकार बादल सूरज को ढक देता है उसी प्रकार माया ने ईश्वर को ढक रखा है। बादल के हट जाते ही सूरज दिखने लगता है, वैसे ही माया के दूर होते ही ईश्वर प्रकट हो जाते हैं।
2: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ज्योतों वाली माँ, छत्रों वाली माँ वैष्णो देवी की छत्र छाया में आए सवाली भक्तों के कदम जैसे जैसे माँ की ओर बढ़ते हैं, महिमा वैष्णो देवी की उनके दुख हर सुखों से उनकी झोलियां भर देती हैं। मुक्तिदायिनी माँ के द्वार पर हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। वैष्णो माता का जयकारा जीवन में नया उजियारा लाता है।

0: साथियों के गाय इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। पेश है श्री रामचरित मानस की आज की कड़ी।
1: एपिसोड 79।

जनकपुर यात्रा के अंतिम चरण में ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम तथा लक्ष्मण गंगा तट पर पहुंचे, जहां ऋषि ने उन्हें गंगावतरण की कथा सुनाई। जनकपुर पहुंच राजा जनक की नगरी की बनावट और उसकी शोभा देख दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए।

नगरी में अनेक बावलियां, कुएं, तालाब, उसमें खिले रंग रंग के कमल, पक्षियों का कलरव, वाटिका में फूलों पर गुंजन करते भंवरे और नगर के चारों ओर फूल पत्तों से लदे वृक्षों की मनोहारी सुषमा का वर्णन शब्दों से परे है। नगर के बाजार की अपनी अलग छवि है। सुंदर चौराहे और गलियां जैसे सदा सुगंध से सींची रहती हैं। राजा जनक के निवास स्थान की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस की आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7 बजे सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। स्वास्थ्य वार्ता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। आज का विषय है पेट में गैस समस्या कारण एवं बचाव। जानकारी देंगे डॉक्टर शफीक आलम। गीत संगीत, गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 7:30 पर। सुबह 8 बजे का समय है समाचार प्रभात के लिए और 8:15 पर सुनते हैं मॉर्निंग न्यूज। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आठ बजकर 45 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी होगा और 9 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 10 बजे। पुनः 11 बजे

जैसे सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। शाम 4:30 पर सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। शाम 5:02 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी सुनेंगे। खेती बारी ये कार्यक्रम हम सुनेंगे शाम 5:30 पर। और युवा दोस्त अपनी पसंदीदा कार्यक्रम युवानी सुन सकते हैं शाम 6:02 पर। 6:30 पर होगा फिल्म संगीत। शाम 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार एवं 7:10 पर जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। और 7:30 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोता अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं कार्यक्रम आपकी चाहत में रात्रि 8:00। 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या। और रात्रि 9:00 होगा न्यूज एट 9। 9:15 पर सुनते हैं स्पॉटलाइट। 9:30 से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

रात्रि 10 बजे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे। 10:30 पर होगा आज के फनकार। रात्रि 11 बजे सुनते हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। हमेशा की तरह हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर। आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए अब सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक रंग, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता डॉक्टर शफीक आलम से। इनसे बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद अली शबीर अंसारी। विषय है पेट में गैस समस्या, कारण एवं बचाव।
1: श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं चिकित्सक शफीक आलम, जिनसे हम बातचीत करेंगे शरीर के अंदर यानी पेट में होने वाले वायु विकार

0: या आमतौर से जिसे एसिडिटी की शिकायत कहते हैं, इसके होने के क्या कारण है और इसका क्या लक्षण है कि शरीर में एसिडिटी की मात्रा बढ़ी हुई है, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और कौन कौन से उपाय हैं या सावधानियां हैं जिसे बरत करके इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस बारे में हम बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, एसिडिटी क्या है?
1: देखिए, एसिडिटी जो होता है वो पेट में बनने वाले गैस, वायु या हवा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पेट में वो बनता है जिससे इंसान अपने आप को
0: अस्वस्थ
1: महसूस करता है और बेचैनी महसूस करता है।
0: जी जी,
1: तो अपने आप को फ्री
0: फील नहीं करता है, ठीक काम में उसको मन नहीं लगना होता। और ये किस प्रकार से मतलब शरीर को प्रभावित करता है?
1: ये शरीर को प्रभावित करने का मतलब ये है कि जब हम अपने खान पान में लापरवाही बरतते हैं, उनको ज्यादा परेशान करता है, शरीर में गैस हो जाता है, पेट में गैस हो जाता है, वो गैस किसी को इतना ज्यादा होता है कि पेट के अलावा पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे कि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: जैसे गैस का अगर प्रॉब्लम है तो गैस से दर्द भी होता है, पेट में भी दर्द का शिकायत सुनने में आता है या शरीर में भी दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होना या सीने में दर्द होना, ये किस प्रकार?
1: गैस जब पेट में आ जाता है तो पेट में होने के बाद वो इधर उधर फिर ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर
0: मूव करता है,
1: चारों तरफ मूव करता है
0: जी।
1: और पेट में कहीं पर बहुत कुछ है पेट में, तो जैसे कि लीवर है, इंटेस्टाइन में चला गया, तो उसमें फिर पेन होने लगता
0: है। एसिडिटी की जो समस्या है वो किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है?
1: ऐसे तो आमतौर पर एसिडिटी 40 बरस के बाद ज्यादा लोगों को परेशान करता है आमतौर पर, लेकिन अभी जो हालात है के हिसाब से देखते हैं कि बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक, तो
0: पहले देखा जाता था कि 40 वर्ष का जो उम्र है या 50 वर्ष का उम्र हुआ उसके बाद गैस का समस्या सुनने को मिलता था। अभी के समय में बच्चों को भी बच्चे भी प्रभावित होते हैं गैस से, तो बच्चों के प्रभावित होने का क्या कारण है?
1: देखिए, क्या है कि खान पान जो है वो ऐसा है कि बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं।
0: पहला कारण जो बनता है वो खान पान, खान पान में तो बच्चों में आमतौर से जैसे बाजार का जो है वो सामान जो खाते हैं, जंक फूड जो हुआ, उसके भी हमको लगता है कि प्रयोग से होता है,
1: उससे भी होता है
0: जी।
1: वही है कि खान पान से ही होता है, बच्चों को भी किसी को कमजोरी रहती है तो उसमें जल्दी अटैक करता है, किसी का इम्यून पावर मजबूत रहता है, कम अटैक।
0: तो अगर जैसे हम इसके बचाव से संबंधित अगर हम बात करना चाहेंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करके या परहेज करके आप गैस की समस्या से उसका निराकरण हम कर सकते हैं?
1: पहला बात ये है कि इसमें से बचाव के लिए सुबह जब सोकर उठे खाली पेट में पानी पीना चाहिए
0: जी। सबसे पहले खाली पेट में
1: पानी पीना चाहिए। और लोग अभी क्या करते हैं, पहले उठते हैं और चाय पी लेते हैं
0: जी।
1: चाय पीने से वो तो और ज्यादा पेट में गैस,
0: खाली पेट में तो चाय पीना ही नहीं।
1: तो लोगों को खान पान भी अभी बचाव के लिए सुबह सोकर उठे तो पानी पिए,
0: पानी पिए, पानी का मात्रा क्या होना चाहिए?
1: मात्रा एक गिलास या दो गिलास भी आप पी सकते,
0: दो गिलास तक आप खाली पेट में पी सकते,
1: खाली पेट में पी सकते। उसके बाद आधा एक घंटे के बाद फिर नाश्ता करें, और नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद भी, जब लोग खाना खा के या नाश्ता करके बैठ जाते, एक और इससे बचने का यही तरीका है कि नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद कम से कम 50 से लेकर 100 कदम आप घर में ही चलें
0: जी जी,
1: जिससे होता है कि जो आप खाए हैं वो सही जगह पर डाइजेस्ट हो जाए टाइम पर। तो ये एक उपाय बचाव का बहुत अच्छा उपाय है।
0: जब भी आप खाना खाते हैं,
1: खाना खाएं तो 50 से 100
0: आप रेस्ट में नहीं जाएं, बैठना नहीं या सोना नहीं है, कम से कम 2-4-20-50 कदम जो आपने कहा उसको वॉक होना चाहिए, खाने जो भोजन जो आपने लिया है सही जगह पर वो अपना
1: पहुंच जाता है और टाइमली डाइजेस्ट होता है
0: जी।
1: इनडाइजेशन से भी गैस बनता है।
0: ये तो हुआ, आपने कहा कि सुबह आपको पानी पीना है, खाना खाया, नाश्ता करने के बाद जब भी खाना खाते हैं तो उसके बाद तुरंत फौरन आपको बैठना नहीं है, थोड़ा सा वॉक कर लेना है।
1: और तली हुई चीज ज्यादा ना खाएं
0: जी,
1: तेल मसाला कम खाएं,
0: तली हुई चीजों में जो भी तेल से जो बनने वाली चीजें हैं उसका प्रयोग कम करें, या तेल का मात्रा जो है वो कम होना चाहिए।
1: और बाहर का चीज खाने से भी बचें, घर का ही खाना खाएं
0: जी,
1: इससे भी बाहर का जो तेल इस्तेमाल होता है तो पता नहीं कैसा इस्तेमाल हो रहा है वो तेल कैसा है, लेकिन घर का लोग तो कोशिश करते हैं अच्छा तेल लाने के लिए
0: जी जी जी,
1: क्योंकि बाजार में तो
0: वगैरह में जो सामान बनता है उसका तो कोई ये गारंटी नहीं है कि
1: एक ही तेल को 4-5 दिन चलाते हैं तो उसमें कार्बन बन जाता है
0: जी, एक जी
1: उस कार्बन बनने से फिर उसी तेल में जो चलाता है।
0: बड़ा कारण ये है कि आप बाहर का जो सामान है वो आपको खाना नहीं है, जहाँ तक संभव हो आपको घर में बनी हुई चीजों का प्रयोग करना,
1: कोशिश यही करनी
0: जी। तो अब उसके बाद ऐसा है कि ये तो बचाव आपने कहा कि घरेलू उपचार एक तरह से ये हो गया
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन वो जो कुछ कारण ऐसा होता है घरेलू उपचार के अलावा भी
1: इसके
0: लोग गैस से ग्रसित होते हैं,

0: उसके क्या लक्षण है और फिर उसके बाद क्या करना चाहिए?
1: लक्षण में जैसे क्या क्या इसमें जैसे गैस बनता है तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं
0: जी,
1: क्या क्या होती है, लक्षण क्या क्या है? तो इसमें पहले तो रोगी को बार बार खट्टी ढगारें आती हैं
0: जी,
1: मुंह में खट्टापन, खट्टा पानी भी आता है
0: जी,
1: मुंह का स्वाद गड़बड़ रहता है
0: जी,
1: छाती में जलन होती है,
0: जलन होता है जी।
1: आपको चाहे तो उसे कब्ज होगा या फिर अतिसार यानी कि लूज मोशन होगा
0: जी, दोनों चीज लूज मोशन भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है जी जी, ये तो गैस के कारण ही होता है
1: जी जी हाँ। और आलस बना रहेगा, सुस्ती बना रहेगा
0: जी,
1: ये जो बीमारी है खास तौर से तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि तली हुई पदार्थ खाना, मीठा खाने
0: जी,
1: मिर्च मसाला से बना हुआ सामान खाने
0: जी,
1: और शारीरिक मेहनत, शारीरिक परिश्रम जो है
0: वो कम
1: कम करने से, कम होने से भी
0: गैस का समस्या होता
1: है। अगर आपको पुरानी कब्ज है
0: जी जी,
1: तो उसमें भी गैस बनता है
0: जी,
1: कारण है। और दिन में सोना ज्यादा
0: जी,
1: और रात में देर तक जागना,
0: जागना जी,
1: ये सब भी गैस बनने के कारण
0: बनता है। तो इन सब चीज बिंदुओं पर अगर लोग या पब्लिक अगर ध्यान देते हैं तो उससे बचा जा सकता, देर तक नहीं जागना है और दिन में जब तक सोना नहीं है। एक चीज बताया आपने कि गैस से कब्ज भी होता है और लूज मोशन भी होता है, तो ये तो कब्ज की स्थिति में तो खैर लोग इलाज कराते हैं या फिर लूज मोशन में जो होता है इसका इस कारण से होता
1: है। देखिए वो तो गैस जो है वो तो ओवरफ्लो कर जाता है पेट में
0: जी,
1: जहाँ नहीं जाना वहाँ चला जाता है, तो डिस्टरबेंस कर देता है। तो डाइजेशन सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो चाहे तो आपको कब्ज होगा चाहे तो लूज मोशन होगा।
0: तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो आपने घरेलू उपचार बताया उसके बाद तो वो लोग कर लेते हैं, घरेलू उपचार के बाद भी अगर स्थिति सही नहीं होती है तब उसके बाद क्या उपाय करना?
1: उसके बाद ये तो सावधानियाँ हो गई और ये जो क्या कारण है होने का ये सब हो गया और क्या इसके लक्षण है ये सब बताया
0: जी,
1: ये सब बताया मैं। इसके उसके बाद भी अगर परेशानी आ गया है, गैस बन ही रहा
0: जी,
1: इसके लिए होम्योपैथी का उपचार कारगर है
0: जी जी,
1: इसका इलाज कारगर है
0: जी,
1: इस दवा को चलाने से गैस का बीमारी धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाता
0: खत्म होता है। तो कितना समय अंतराल का?
1: 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका दवा चलाने से
0: जी जी
1: गैस का बीमारी ठीक होता
0: है। और मेन है कि जो परहेज इसमें करना है, जिन चीजों से सावधान रहना है उसको अगर हम बरतते हैं तो गैस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा
1: मिल सकता है।
0: तो डॉक्टर साहब आपने गैस से होने वाली जो समस्याएं हैं और जो परेशानियां हैं उससे किस तरह से बचाव किया जा सकता है इस बारे में जो जानकारी आपने हमारे साथ साझा किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पेट में गैस समस्या कारण एवं बचाव इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सफीक आलम, इनसे बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अली सबीर अंसारी। इसी के साथ स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत। गीत संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सोनू निगम के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता। तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

सोनू निगम के गायस गीत के साथ ही गीत संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: तो पैसे जमा कराती है। कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन

0: की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026.

0: 6 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केउंझर के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। काशदास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का

0: का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है, वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ

बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस समझौते के तहत बिहार को 5.75 MAF और

0: जो सोन नदी के ऊपर बहने वाले पानी में जो हिस्सेदारी होगी वो कितनी होगी। एक लंबे समय से चले आ रहा ये विवाद अंतोगत अपने मकाम पर पहुंचा है और ये जरूरी है कि हम सब मिलकर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इन समस्याओं का समाधान करें।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने 2019 से 2024 के मतदाता आंकड़ों का हवाला देते हुए पाकुड़, राजमहल, लिट्टीपाड़ा सहित 14 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष समुदाय की वृद्धि दर अन्य की तुलना में काफी अधिक होने का दावा किया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी और आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और इसमें राजनीतिक संरक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान, खतियानों का सत्यापन और संथाल परगना में डिटेंशन सेंटर बनाकर घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासन की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन HMIS ICU CCTV डैशबोर्ड और HRIS सहित विभिन्न डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल पेमेंट की सुविधा 15 दिनों के भीतर शुरू करने तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चुनाव आयोग की ओर से राजधानी रांची में कल से मतदाता पंजीकरण तथा मतदाता पंजी विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटर रजिस्टर विषय पर होने वाले इस सम्मेलन के लिए अब तक 59 रिसर्च पेपर प्राप्त हो चुके हैं।
2: इंडिया में कितना भी इंस्टीट्यूशन है, सभी के हम लोगों को प्रचार करते हुए उसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए था। उसमें अभी 59 पेपर्स प्रेजेंटेशन हो रही है। राकेश वर्मा सर है, वो आएंगे, आपका DG ट्रिबलेडियम आएंगे, साथ में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शन मैनेजमेंट है इलेक्शन कमीशन का, वहां से भी ऑफिसर्स लोग उसी में पार्टिसिपेट करेंगे।
1: लातेहार में जिला प्रशासन और DMFT फंड के सहयोग से किसानों द्वारा उत्पादित प्रसिद्ध जीरा फूल चावल की 6.70 मैट्रिक टन खेप को गुड़गांव दिल्ली के लिए रवाना किया गया। उपायुक्त संदीप कुमार, उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद और DPM JSLPS संतोष कुमार ने समाहरणालय परिसर से वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महुआडांड़ FPC के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसान से पर भेजी गई इस खेप का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, उनकी आय बढ़ाना और जीरा फूल चावल को व्यापक बाजार और पहचान दिलाना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार तरुण कपूर 2 दिवसीय दौरे पर धनबाद स्थित BCCL पहुंचे, जहां उन्होंने कोयला भवन में कंपनी के उत्पादन, डिस्पैच और भविष्य की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री कपूर ने पुटके स्थित मुनिडीह में कोल बेड मिथेन ब्लॉक 1 परियोजना का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत में तरुण कपूर ने बताया कि कोल बेड मिथेन गैस का इस्तेमाल भविष्य में CNG और घरेलू गैस के तौर पर किया जा सकता है।
3: हमारे यहाँ कुछ ही जगहें हैं जहाँ पे मीथेन गैस है, कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के दायरे में आती है कि वही करेंगे, परंतु अब कोल इंडिया को भी ये अधिकार दिया गया है कि जहाँ भी उनके कोल फील्ड में गैस निकलेगी वो गैस निकाल सकते हैं, और गैस जो है वो पाइप में डालनी है, पाइप में डाल के फिर वो घरों में भी यूज हो सकती है और CNG की तरह गाड़ियों में भी इस्तेमाल हो सकती है।
1: केंद्र सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार

0: का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
1: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है, बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक के कारण टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में आसनसोल आद्रा, आद्रा मिदनापुर और आद्रा विष्णुपुर मेमू रद्द रहेंगी, जबकि गोमो चक्रधरपुर एक्सप्रेस और चक्रधरपुर गोमो मेमू महुदा तक ही चलेंगी। खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 2, 5 और 6 सितंबर को आद्रा में शॉर्ट टर्मिनेट होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है। मौसम। खूंटी, गुमला, सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए भारी बारिश, वज्रपात और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। सोन नदी जल बंटवारे की खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, झारखंड और बिहार के बीच 25 साल पुराना सोन नदी जल विवाद खत्म। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मानसरोवर गए पोटका के दंपति नेपाल में लापता। प्रभात खबर की सुर्खी है, मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को कहा अलविदा। दैनिक जागरण लिखता है, सिविल जज परीक्षा रद्द करने के मामले की सुनवाई एकल पीठ में होगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड और बिहार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर हुआ समझौता। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुई बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र, संथाल परगना में घुसपैठ की जांच और डिटेंशन सेंटर की मांग। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर का 2 दिवसीय धनबाद दौरा। मुनिडी कोल बेड मिथेन परियोजना का किया निरीक्षण। अक्टूबर 2027 से गैस बिक्री की तैयारी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 6 सितंबर तक इंजीनियरिंग और सिग्नल कार्यों के लिए रोलिंग ब्लॉक। टाटानगर गोमो सहित कई रूटों की प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। खूंटी, सिमडेगा समेत राज्य के 9 जिलों में आज बहुत भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.5 पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस प्रसारण में मैं हूं आपके साथ सुनीता। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम लोक रंग का, जिसमें आज आप सुनेंगे उराव भाषा में लोकगीत। कलाकार हैं किशुन उराव और साथी। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। दोस्तों, मॉर्निंग मेलोडी के शुरुआत में आई हम आपको सुनाते हैं अनुराधा पोडवार और भूपिंदर सिंह की आवाजों में ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अनुराधा पोडवाल और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी प्रोग्राम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

दैनी दयाल की आवाज में आप सुन रहे थे अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत, टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत आपने सुना। और हमारा दिल भी बिल्कुल टू स्टेट में रहता है कि स्वास्थ्य की ओर जाए या लालच की ओर, किसे चुने। जब भी बात आती है कि डाइट की जाए या पोषकता को अपने खाने में ध्यान दिया जाए उसका, तो कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। एक दो दिन की डाइट तो फिर भी चल जाती है, लेकिन आगे जब अपनी सब पसंदीदा चीजों को छोड़ना होता है, आमतौर पर पता नहीं क्यों हमें वही चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारा मन तो उसी ओर हमें लेकर जाता है, बार बार उसी ओर लेकर जाता है, और हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो जब किसी तरह की मजबूरी हमारे ऊपर आ जाती है, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ जाती है, तो कुछ दिन तो हम ये फॉलो करते हैं, कुछ दिन तक हम ये मानते हैं कि भाई ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगती है और स्वास्थ्य के अच्छे होने की खबर हम तक पहुंचती है रिपोर्ट्स के जरिए, या हमारी अच्छी सेहत हमारे चेहरे पर नजर आने लगती है, तो हमारा मन एक बार फिर हमें उन्हीं गलियों में ले जाना चाहता है जिन गलियों से हम किसी तरह से निकलकर अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे समय पर खुद को रोकना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा खुद के साथ सख्त होना भी पड़ता है कभी कभी, कभी कभी मन को समझाना पड़ता है। लेकिन ये चीज आप सोचिए कि खुद से आपको प्यार करना है, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य हो तो हर दिन त्योहार ही होता है।

0: आई लव न्यू ईयर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ें, मयूर पुरी के बोल, प्रीतम का संगीत।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा, किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बातें कर रहे हैं पौष्टिकता की या कहें राष्ट्रीय पोषकता सप्ताह के मौके पर हम बात कर रहे हैं अपने जीवन में पौष्टिकता हम कैसे ले आ सकते हैं खान पान में और किस तरह से जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उन्हें अपने खान पान से दूर कर सकते हैं। तो जब भी हम डाइट करने का एक फैसला करते हैं तो एक मौके पर जाकर हमारा मन हमें वापस उस ओर ले जाना चाहता है जहां से हम किसी तरह निकल के आए, लेकिन ऐसे वक्त में हमें जमे रहना है।

अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज में, अमित त्रिवेदी का संगीत लुटेरा फिल्म के इस गीत में। और जब भी हम कदम बढ़ाते हैं स्वास्थ्य की ओर तो कुछ इसी तरह से मन गुनगुनाता है और जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत बदलाव आ गया है। शरीर भी हमें हल्का लगता है, चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है, लेकिन इस ओर बढ़ने के लिए ऐसा लगता है जैसे ये लुटेरा फिल्म का गीत था, लगता है कि हमारी सारी खुशियां ही लुट गई हैं, कुछ भी हमें खाने पीने नहीं मिलता। पर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये अगर हम सोचें तो एक बड़ा बड़ा जो हम कदम उठाते हैं ना, बड़े बड़े फैसले लेते कि आज के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाएंगे, मिठाई को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह के जब बड़े बड़े हम फैसले लेते हैं तो कुछ समय के बाद वो हमें ज्यादा लगने लगते हैं, दबाव लगने लगता है कि क्या करें। इसलिए जब हम जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। स्वास्थ्य की ओर भी इसी तरह से आप छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप इन कदमों के जरिए ही एक बड़ी मंजिल को पा भी सकते हैं। तो छोटे कदम क्या हो सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा कदम तो ये हो सकता है कि आप भोजन में नमक और शक्कर की मात्रा धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। तो इससे आपका जीवन तो बदलाव आएगा ही आपके जीवन में, और साथ ही साथ आपको अपने आप ही ये बदलाव महसूस होंगे। तो चलिए कुछ ऐसा ही करते हैं, आज के लिए इतना ही प्रण काफी है।

श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे समीर के बोल, इलैयाराजा का संगीत चीनी कम फिल्म के इस गीत में। और आप भी सोचिए कि आज से अपनी चाय कॉफी में लेंगे चीनी कम और रखेंगे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, साथ ही बनेंगे अपने ही स्वास्थ्य के नजरबट्टू।

तो आज से रखेंगे अपना ख्याल और अपने स्वास्थ्य का ख्याल, इसी वादे के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम से इजाजत लेते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, सी अर्जुन का असली नाम अर्जुन चंचलानी था। इनके संगीत से सजे समरे कई गाने पॉपुलर हैं, पर सी अर्जुन को वो ख्याति नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। छोटे बजट की एक फिल्म आई थी सन 1975 में। इस फिल्म के भक्तिमय गीतों ने चारों तरफ धूम मचा दी थी। 16 शुक्रवार की महिमा को फिर जैसे इस फिल्म ने पुनर्स्थापित किया था। पंडित प्रदीप के सधे हुए बोल और सी अर्जुन के ओजपूर्ण संगीत ने भक्ति का जैसे सूत्रपात कर दिया था। इसी फिल्म के तूफानी संगीत ने सी अर्जुन को लोकप्रियता के शिखर पर बैठा ला था। फिल्म थी जय संतोषी माँ।

1 सितंबर सन 1933 में सिंध कराची में हुआ। पार्टीशन के बाद उनका परिवार गुजरात के शहर बड़ौदा में बस गया। संगीत की शुरुआती तालीम उन्हें अपने पिता से ही मिली, जो स्वयं एक गायक थे। संगीत के क्षेत्र में करियर हेतु जब वो मुंबई आए तो अपने जमाने के जाने माने संगीतकार बुलोसी रानी के वे असिस्टेंट बन गए। 1958 में स्वतंत्र रूप से संगीत देने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। फिल्म थी अबाना, जो सिंधी भाषा में बनी थी। हिंदी फिल्मों में संगीत उन्होंने 1960 से

से शुरू किया। फिल्म थी रोड नंबर 303। दुर्भाग्यवश उन्हें कोई नामचीन या बड़ा बैनर नहीं मिला। लो बजट फिल्मों में वो संगीत देते रहे, नाम और दाम उन्हें उतना नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। संगीत मगर उन्होंने आला दर्जे का दिया है। सी अर्जुन मिरड़ी के जानकार थे, इसलिए उनके द्वारा संगीत बद गाने आज भी उतने ही तरोताजा हैं। हर गाना बेमिसाल है। इसी की मिसाल पेश करने वाला ये गाना, जिसे मोहम्मद रफी और मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद ने गाया है, 1963 में आई फिल्म सुशीला का ये अमर गान है। इसमें आशाओं और उम्मीदों की संगीतमय किरणें हैं जिन्हें जगाया है सी अर्जुन ने।

पुनर्मिलन के सारे ही गाने वैसे तो मीठे और मधुर बन पड़े हैं। सबसे पहला गीत इस फिल्म का जो जहन में आता है, रफी साहब की पुरसोज आवाज का जादू जगाता ये गाना, जिसे इंदीवर साहब ने लिखा है, फिल्माया गया है अभिनेता जगदीप पर।

इस गाने का असर आज भी उतना ही है तब से जब से ये गाना बना है, यानी सदाबहार एवर ग्रीन सॉन्ग का दर्जा हासिल है इसे। इसी फिल्म की और भी संगीत रचनाएं बड़ी ही यादगार हैं।

1961 में आई थी फिल्म मैं और मेरा भाई। आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गाना इतना मेलोडियस बन पड़ा है कि लगता है जैसे अभी अभी ही बना हो। इतना तरोताजा और समसामायिक, हर दौर में उतना ही असरदार।

दोस्तों, सी अर्जुन की ये रचनाएं सुनते हुए यूं लगता है ये युगों युगों तक चलने वाला संगीत है। इतना सजीव, इतना इमॉर्टल। कितने ही ऐसे गाने हैं जिन्हें लोगों ने काफी सराहा, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाने जिस संगीतकार की जहन की उपज है उसका नाम है सी अर्जुन।

दोस्तों, कानून और मुजरिम फिल्म का ये गाना शायर अहमद वसी साहब का लिखा हुआ है और इसे गाया है सुरेश वाडकर और उषा मंगेशकर ने। सी अर्जुन एक निहायत ही ऊंचे दर्जे के प्रतिभाशाली संगीतकार थे, पर वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वो खुश नसीब हैं जिनका इक्का दुक्का गाना भी चल जाता है और वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ऐसी खुशकिस्मती सी अर्जुन साहब को नसीब नहीं हुई और वो 59 साल की छोटी सी उम्र में ही अपना संगीत संसार पीछे छोड़ इस संसार से रुखसत हुए।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जाने माने संगीतकार सी अर्जुन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादक एवं प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं। पेश कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: Nine, eight, seven,

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो हजारीबाग।
2: हेलो हजारीबाग कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को ममता का नमस्कार, प्रणाम, जोहार।

दोस्तों, आज है राष्ट्रीय पोषण दिवस। जी हाँ, हर वर्ष 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार और अच्छे पोषण के प्रति जागरूक करना है। अच्छा पोषण हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। संतुलित भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी होना आवश्यक है। दोस्तों, सही पोषण से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इस दिन लोगों को कुपोषण, एनीमिया और असंतुलित आहार से होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाती है। स्कूलों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमें हरी सब्जियां, फल, दालें, अनाज, दूध आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। जंक फूड का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज से ही एक सही उन्नत देश का निर्माण होता है। इसके लिए जरूरी है सही पोषण।

दोस्तों, सड़क सुरक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना चाहिए, निर्धारित गति से वाहन चलाना चाहिए और सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करने से हमारा और दूसरों का जीवन सुरक्षित रहता है। थोड़ी सी सावधानी बड़ी दुर्घटना को रोक सकती है, इसलिए सड़क पर अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ यातायात नियमों का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है।

दोस्तों आइए जानते हैं आज के मौसम का हाल। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आज भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है, तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा।

बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

दोस्तों आइए अब हम जानते हैं हमारे आसपास चल रही घटनाओं की जानकारी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना है कि पढ़ाई के साथ संवाद और नवाचार पर जोर दिया जाए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आज से मनाया जा रहा है। कुपोषण की गिरफ्त में राज्य है। 6 माह में लगभग 8,000 नवजात कुपोषित चिन्हित किए गए। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने दिखाए हैं अपने दम। रंगारंग कार्यक्रमों के बीच खेल महोत्सव का समापन हुआ। विजयी प्रतिभागी सम्मानित हुए। फुटबॉल में बालिका वर्ग में हजारीबाग और बालक वर्ग में रामगढ़ प्रथम आए हैं।

दोस्तों अब आइए जानते हैं उन घटनाओं की ओर जो आज ही के दिन हुए थे। 1947 में भारतीय मानक समय IST को पूरे देश के लिए आधिकारिक समय बनाया गया। सन 1956 में आज ही के दिन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। सन 1942 में रास बिहारी बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एवं रिफाइनरी का गठन हुआ। 1574 में गुरु अमरदास जी का निधन हुआ था।

आइए जानते हैं आज का विचार। सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। मेहनत करती रही, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी।

हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की

अभी आप सुन रहे थे हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी का सिर्फ विविध भारती पर।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत।

ये कवाली आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म से, मोहम्मद रफी बिलबीर और साथियों की आवाजें थी। कैफे आजमी के बोल थे मदन मोहन का, संगीत था।

पहली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, हेमलता और चंद्राणी मुखर्जी की आवाजें थी। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।